0: me a extreme energy drink.
1: Extreme energy drink.
2: Time check. अहिले ठीक 6 बजेको छ.
3: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.
4: मर्सिडिज़ FM 95 मेगाहर्ट्ज़. 95 मेगाहर्ट्ज़.

स्यादलो रेडियो मर्सङ्गी 95 मेगाहर्ज दिँदै इन्टरनेट अनलाइन रेडियो मर्सङ्गी .org जरी नाना 8 बजे खबर तमुके मर्सङ्गी फेटेरी गाखुसीमा तमुसोला तेवा म ओइसरी क्रट फेटे

दोस्रो गण्डकी तारा प्रतियोगिताले लागि लमजुङ तक्या युगेस परियार छनौट चलि आर्थिक वर्ष नौ महिनारी दौड़दिरी 9282 खेदो मैरी खेदोला उपचार 91 खेतोरी कृत्रिम गर्भधान मनाङ्ग्री तीन तला दक्या तीआई मरे क्रिजानाजी वाटीआई मु देव जिल्ला स्तरीय खुला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता रिसुन्द्र बजार भए मन बिर्देर सबिनाइना जोडी ऐसुकै मु तारंगी दूत आए फेते पोखरारी जेठ 9 गते तब दोस्रो गण्डकी तारा प्रतियोगिताका लागि लमजुङ तक्या युगेश परियार छनौट तैम राष्ट्रिय लोकदेह दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल लमजुङ शाखा चाहिँ आइतबार विस्तारले आयोजना लब छनौट कार्यक्रमले सहभागी 6 जना प्रतिस्पर्धी मध्ये परियार छनौट तब निर्णायक मण्डल संयोजक शंकर बिराहे तमुजी बीमो कार्यक्रम प्रतिष्ठान लमजुङ प्रदेश प्रशान्त तामाङ अध्यक्ष तर्देर जिल्ला समन्वय समिति लमजुङ प्रमुख पूर्ण बहादुर तमैना प्रमुख आतिथ्य तरी तलो दोर्दी नाश पालिकरी महबू पशु सेवा शाखा चीन 9000 भन्दा बढ़ी खेतो मैदे उपचार सेवा पीवा बीमो चलिबा आर्थिक वर्ष 82-83 9 महिना नवदेवी शाखा

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी

बन्दीपुर केबल कार को बटन स्टेशन केबल कार चोक तनहुमा खुले को ड्राइव इन रेस्टुरेंट गए खोजे को, रोजे को, थरी थरी का स्वास्थ्यवर्धक खाना का परिकार रिफ्रेशमेंट को लागी मनमोहक बगैचा धार्मिक पार्क र जंगली म्यूजियम हेर्ने मौका पाउनुहोस् साथ ही शिव भगवान को विशाल मूर्ति को दर्शन पनि गर्नुहोस्।

लटक भटक लौंडो के दिल पटक पटक सांसे जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट क्रिकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

वाला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.

आजतक कई लड़कियां देखी पर कोई याद नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ये चेहरा हमेशा दिमाग में रहेगा, ये आंखें जो मुझे देख रही।

इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात

हम इस देश के वासी हैं जहां रोज ही दंगा रहता है, जहां रोज रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है, जहां आम आदमी सड़कों पे आधा सा नंगा रहता है। इस हाल में भी, इस दौर में भी, हर दिल में तिरंगा रहता है।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: Mania.
1: Extreme energy drink.
2: 아니, 쿠시, 게 칸죠? 아스칼다 전에이 푸르디로 라 스워스토 데크추다.
3: 칸이다 카스테 게이 호이나 디디. 람중 에그로비 컨선 드와라 우트파디트 수드다 람중 마하 비하나 벨루카 다이닉 에케 참차 칸이 가리고 추.
2: 아니 마하 사이 수드다 라 어가닉 네 홀아 라?
3: 호니 디디. 람중 마하 다 1350 미터 우사이 마 아프네이 펌마 정갈이 스로드 바타 우트파디트 카티키 어가닉 마하 호.
2: 마하 바이크 어루 키케 파인차 데 해?
3: त्यहाँ त जिल्लाकै पहिलो र एकमात्र शुद्ध मह मौरीको गोला सहितको घार खाली घार कृषि तथा मौरीजन्य औजार बिउ बिजन सुपथ मूल्यमा पाइनुका साथै तालिम र परामर्श समेत दिइन्छ नि।
2: ओहो, स्वास्थ्य पनि कमाईको बाटो पनि एकै ठाउँमा। म पनि आजै गएर मह र मौरी पालन सम्बन्धी परामर्श लिइहाल्छु।
4: तपाईले रोजेको र खोजेको जस्तै शुद्ध मह मौरी गोला सहितको घार खाली घार कृषि तथा मौरीजन्य औजार बिउ बिजन सुपथ मूल्यमा पाउनका साथै तालिम र परामर्शका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। प्रोप्राइटर बुद्धि आले, मुख्य कार्यालय सुन्दर बजार 5 गहते लमजुङ, सम्पर्क कार्यालय बेसीसर 8 13 चौतारा नजिकै बस पार्क जाने बाटो कर्पूरेश्वर सिसा तथा प्लाई पसल सँगै रहेको घर। थप जानकारीको लागि 98611 39157।
3: महको सेवन स्वास्थ्य र दीर्घ जीवन।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

गन्तव्य पुरानो तर उचाई नयाँ बन्दीपुर केबल कार यही जेठ 31 गतेबाट व्यावसायिक सञ्चालनमा छ। बन्दीपुर केबल कार, प्रकृतिसँग रमौ खुलेर।

0: तपाईको आफ्नै रेडियो रेडियो मर्चेन्ट बीएफएम 95 मेगाहर्ज। एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ.
1: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.